0: केंद्र ते सुनदिया समाचार हिंदी च।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दाई जलंधर केंद्र। ज्ञान अमृत

मेरी वेव 343 इशारा 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। पेश है भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद

दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

आओ हुण तुहानू परिचय तहत जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर। 8:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम महक पंजाब दी। 9:02 ते तुसी सुनोगे फिल्म म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम। 9:30 तुसी सुनोगे गजलां। 10:02 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम हालो फरमाइश का। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो। दिल्ली नंबर है जी 0181-3342-173। 11:05 ते प्रोग्राम पेश किया जाएगा धमक जलंधर पैंती। बारह बज के पाँच मिनट ते समा रहेगा जी प्रोग्राम वसते वेड़े का। इस प्रोग्राम च अज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसिस बारे जानकारी दी जाएगी ते नाल दे नाल उडारिया दे तहत सुखदेव कौर होरां नाल गलबात की जाएगी। 1:15 प्रोग्राम पेश किया जाएगा फौजी वीरां लई।

0: शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शबद कीर्तन का सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। शाम 6:30 दिहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा, इस तुसी काम दिया गल्ला मंडिया दे भाव बारे जानकारी लोगे ते नाल दे नाल नरमे दे कीड़े ते देखभाल बारे डॉक्टर सुनील पंधीर होरा पासों जानकारी सुनोगे। शाम 7:10 ते विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा, विशा रहेगा आतंकवाद सिक्योरिटी ते डिफेंस एनालिस्ट। 7:45 ते शाम प्रोग्राम पेश किया जाएगा इंग्लिश टॉक, इस विशा होगा पावर ऑफ योगा ते इस गलबात ते जानकारी देंगे डॉक्टर कुणाल मेहता। 8:00 प्रोग्राम पेश किया जाएगा जी जिंदगी हसीन है। 9:15 रात प्रोग्राम पेश किया जाएगा स्पॉटलाइट ते 9:30 तुसी सुनोगे खेड संसार प्रोग्राम। रात 10:02 ते पेश किया जाएगा जी शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना, इस च तुसी कलाकार डॉक्टर संतोष नाहर होरा पासों वायलन वादन राग जोग सुनोगे। ते रात 10:30 पेश किया जाएगा सरगम। ऐसी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले साडे प्रोग्रामा दा वेरवा हुण तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् संबंधानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोः

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जा इंतजार होर।

अरिजीत सिंह, नेहरा जोशी, देश पांडे दी आवाज़ जो तुसी सुन रहे सी, बहुत सोहना जहा गीत ते प्रोग्राम चल रहे जी। सोहनी सवेर दोस्तों, हुण वेला हो चुके एक शुभ विचार दा। कहिंदे ने कि कई वार असी बहुत वार इंसान जड़ा वो सोचता है कि सफल लोग जड़े ने शायद उन्हां दा राह आसान है, उन्हां नूं जिहड़ी सफलता है वो आसानी ना मिल जाती होगी। पर दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि उन्होंने औखे राहां ते चलना नहीं कदे भी छड्या, तां करके उन्होंने सफलता मिली है। जिंदगी विच हर दिन जड़ा है ना, वो सानू दो ऑप्शनस दिंदा है, एक बहानिया दा ते दूजा कोशिश करन दा। जिहड़े लोग बहानिया दी थां कोशिशां नूं चुनदे ने ना, वो हौली हौली अपनी मंजिल दे नेड़े पहुँच ही जाते हैं। इस लई शुभ विचार भी अज तक कुछ यही कहिंदा है कि हौली चलना मंजूर हो सकता है पर रुक जाना नहीं। रुकना नहीं है, क्योंकि जेकर रुक गए तो फिर असी वांझे रह जावांगे। क्योंकि कहिंदे ने कि छोटे छोटे जिहड़े कदम ने ना, वो एक वड्डियां मंजिलां तक सानू लै के जाते हैं दोस्तों। तो जरूरी यही नहीं कि सिर्फ असी अपने आप ते ही भरोसा करना करके, अपने आप ते भरोसा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन उस तो ज़्यादा रब ते भरोसा रखो। इस निरंकार ते भरोसा रखो कि साढ़े नाल वो एक पावर है, वो साढ़े आस पास है, जो सानू हिम्मत बख्श रही है, जो सानू सब कुछ करन दा जो है कि वो हिम्मत एक बख्शी जा रही है, जिदे करके असी अगे वध रहे हैं अपनी मंजिला दे वल। ते इसी सोच दे नाल प्रोग्राम सोहनी सवेर च असी अगे वधदे हाँ, ते राहत फतेह अली खान की आवाज़ सुनते हाँ। इसी गल दे नाल रलदा मिलदा एक गीत।

श्रेया घोषाल ते सोना महापता दी आवाज़ च तुसी इंजॉय कर रहे सी जी गीत प्रोग्राम सोहनी सवेर च। हुण तुहानूं जानकारी दिंदे हां मौसम बारे। जी हाँ दोस्तों, IMD वल्लों जिहड़ा है ओह अज पंजाब दे 13 जिलिआं च आंधी ते तूफान ते बिजली गर्जन दी जिहड़ी चेतावनी है ओह जारी कीती गई है। नाल दे नाल जेकर असी गल करिए पंजाब च बहुत सारे अजिहे इलाके भी ने जिथे कहा जा रहा है कि हल्की जड़ी बारिश है वो भी हो सकती है। पर दोस्तों मौसम जड़ा ना काफ़ी ज़्यादा इस वेले कन्फ्यूजिंग बने हुआ है क्योंकि बीते जेकर असी गल करिए दिना ते जड़ी बारिश हुई है उन्हें कितना कितने लोगों को राहत जरूर दिती है। तापमान च गिरावट जड़ी है दर्ज की गई है पर नाल दे नाल ए जड़ा हुण आने वाले महीनों जड़ा मौसम है वह उमस भरिया कितना कितने रहेगा क्योंकि जड़ा मॉइस्चर है वह एनवायरमेंट होएगा तो वोद करके जड़ा है लोगों हल जिहड़ी उमस भरी गर्मी उहदा सामना तो करना ही पवेगा। लेकिन हुण जो IMD वल्लों जिहड़ा अलर्ट जारी किया गया उहदे च कुछ इलाके दसे गए ने जिहदे विच कहा जा रहा है कि बुढलाडा, लहरा, पातड़ा, बटाला, अजनाला, इस दे नाल ही डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर ते पठानकोट दे कुछ इलाके ने जिथे 40 to 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां ते बिजली गर्जन की संभावना जिहड़ी है IMD वल्लों जताई गई है। इस दे नाल ही फाजिलका, मुकसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, जीरा पट्टी कुछ ऐ इलाके ने जिथे कहा जा रहा है कि 30 to 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार नाल जिहड़ियां ने हवावां चलनगियां। तो दोस्तों कितें ना कितें मौसम जिहड़ा है वह इन्हां इलाकियां दे विच बदलदा होएगा जरूर दिखाई देवेगा। तो हले मौसम विभाग वल्लों यह कहा जा रहा है कि 19 जून तक जिहड़ा मौसम है वह इंजी उस करवट देखने नू मिलेगी तो कितने ना कितने लोगों लई राहत भी है। तो दोस्तों इस दे नाल ही पंजाब च प्री मानसून भी जड़ा है वह दस्तक देवेगा। उस तो बाद मानसून आएगा, चंगी जड़ी बारिश है होगी तो उद्दे विच किवें असी अपना ख्याल रखना है। प्रोग्राम सोहनी सवेर च उस बारे भी तुहानू जानकारी देवांगे। हुण तुसी सुनो अरिजीत सिंह ते निकिता गांधी की आवाज़ च यह सोहना जिहा गीत। उस तो बाद प्रोग्राम सोहनी सवेर च तो हाड़ली शेयर करांगे होर कुछ टिप्स।

अरिजीत सिंह ते निकिता गांधी दी आवाज़ से तुसी सुन रहे सी दोस्तों, बहुत सोहना जिहा गीत। ते जिवें कि असी तुहानू जानकारी दित्ती सी कि प्री मानसून दैन मानसून दी एंट्री जिहड़ी है ओह होवेगी, ते उन्हां इस दौरान जिहड़ा असी किन्हां गल्लां दा दोस्तों ख्याल रखना है ताकि साडी सेहत जिहड़ी है ए फिट रहे, तो असी इस पूरे मौसम का आनंद भी माण सकी। तो दोस्तों कोशिश करो कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इन्हां दिनां च बाहर का जिहड़ा खाना है खाना जो भी है उन्हें अवॉइड करो। इस नाल ही इन्हां दिनां च मच्छर भी वधणगे, तो कोशिश करो जी आस पास जिहड़ा कूलर होणगे या फिर गमले होणगे उन्हां च पानी ना जमा होण दईए। नाल दे नाल एमरजेंसी किट जिहड़ी है वह आपां जरूर रखिए, टाइम टू टाइम असी अपने जिहड़ा है वो हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो उबला पानी जिहड़ा है दोस्तों वो पियो, तो ताज़ा फ्रैश एकदम जिहड़ा है वो असी कोशिश करिए कि खाने जिहड़ा उहदा सेवन करिए, क्योंकि मौसम की नमी की वजह नाल दोस्तों बैक्टीरिया तो मच्छर जिहड़े ने पनपते हैं, तो अगों डेंगू मलेरिया तो पेट नाल संबंधी जिहड़ियां बीमारियां ने उहनां दा वधन का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा है रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इन्हां गल्लां दा असी खास तौर पर ध्यान रखना है, तो असी मौसम जिहड़ा बारिश का मौसम है उहनूं भी अगों इंजॉय करना है। तो घड़ी दी जिहड़ियां सुइयां ने ना दोस्तों वो हुण प्रोग्राम नूं खत्म करन वल इशारा कर रहियां ने, तो उम्मीद करदी हाँ कि अज दियां जिहड़ियां असी गल्लां विचारां ते गीत तुहाडे नाल सांझे कीते ने वो तुहाडी सवेर नूं उहनां ने होर भी खूबसूरत बनाया होवेगा। तो जाते जाते दोस्तों एक छोटी जी गल, कहिंदे ने कि हर दिन जिंदगी दी किताब दा एक नवा सफ़ा हुंदा है। कोशिश करो कि अज दे जिहड़े सफ़े ते कोई ऐसी गल जरूर लिखो जिस नूं कल याद जे तुसी करो ना जदों, ते उदों तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट होवे। रब करे जी तुहाडा सारिआं दा दिन जिहड़ा है ओह अज दा खुशियां नाल भरिया होवे, तुहानूं सारिआं नूं रब चंगी सेहत बख्शे, सफलता बख्शे, ते सकून नाल जिहड़ा तुहाडा दिन है ना ओह अज दा भरिआ होवे। चढ़दी कला च रहो सारे। हुण मैनूं अपनी दोस्त शुभिता नूं इस आखिरी गीत दे नाल इजाज़त दो, फिर मिलांगे इक नवीं सवेर च एक नवी कुछ नवी जानकारी दे नाल। फिलहाल जांदे जांदे इंजॉय करो यह गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।

0: फ्रांस के एव्यू शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5000

0: 1400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेक ने सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी।

0: पैसे प्रति लीटर तो वधा के 12.05 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ये वादा आज तो लागू हो गया। पेट्रोल ते बरामद ड्यूटी विच कोई बदलाव नहीं किया गया। घरेलू खपत वास्ते पेट्रोल ते डीजल दे मौजूदा ड्यूटी दरां च कोई बदलाव नहीं किया गया। पछमी एशिया च चल रहे संकट दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की ढुकवीं घरेलू उपलब्धता यकीनी बनाने लई केंद्र सरकार के चल रहे उपरालों दरम्यान सोध की गई है। सरकार ने विदेशी शिपमेंटा घट करन अते घरेलू बाजार च सप्लाई नू तरजीह देने लई 27 मार्च तो पेट्रोलियम उत्पादों ते बरामद ड्यूटी लगाई सी। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर अते फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ते सबका प्रयास के सिद्धांतों तो प्रेरित होकर भारत ने पिछले 12 साल बेमिसाल तब्दीली देखी है। आकाशवाणी खबर पिछले 12 साल वख-वख खेतरां च सरकार के उपरालों से एक विशेष लड़ी पेश कर रहे। अज के अंक च असी दहशतगर्दी खिलाफ सरकार की बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति बारे गल करांगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले साल 6 अते 7 मई दी विचकारली रात नूं ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया नूं एक स्पष्ट सुनेहा दिता कि भारत जंग नहीं चाहुंदा पर दहशतगर्दी नूं बर्दाश्त नहीं कीता जावेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नवी लाल लकीर खिंची कि जेकर दहशतगर्दी एक राजनीति है तो इस दा सीधा अते जबरदस्त जवाब दिता जावेगा। लश्करे तैयबा जैश ए मुहम्मद अते हिजबुल मुजाहिदीन दे टिकाणियां नूं निशाना बनाउंदे होए भारत ने पाकिस्तान अते पाकिस्तान दे कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विच स्थित 9 वड्डे दहशतगर्दी टिकाणियां नूं सफलतापूर्वक तबाह कर दिता। इस ऑपरेशन विच 100 तों वध दहशतगर्द मारे गए। 9 अते 10 मई नूं भारत एक ही ऑपरेशन विच परमाणु हथियारबंद राज दे 11 एयर बेसां ते हमला करन वाला पहला देश बन गया। इस दे नतीजे वजों पाकिस्तानी हवाई सेना दे 20% बुनियादी ढांचे नूं तबाह कर दिता गया। कई विश्व नेतावां वल्लों भारत नूं व्यापक आलमी समर्थन प्राप्त होया। ए भारत दी वधी हुई मजबूत आलमी स्थिति दर्शाउंदा है। आकाशवाणी खबरां नाल गल करदे होए सेवा मुक्त लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों जो जम्मू कश्मीर विच 15वीं कोर दे कमांडर रहे ने उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर दौरान सरकारी एजेंसियां दी खुफिया जानकारी दी प्रशंसा कीती।
2: मैनूं ए बहुत गर्व है इस गल दा। हिंदुस्तान दी सरकार ने हिंदुस्तान दे फौज ने आर्मी नेवी एयरफोर्स ने एक इन्ना वधिया मिलिट्री ऑपरेशन नूं अंजाम दिता पर इंटेलिजेंस या खबर इन्नी पक्की सी इन्नी मजबूत सी कि पाकिस्तान दे अंदर जो कहंदे ना घर में घुस के मारेंगे उन्हां दे 9 टेरर टारगेट्स उपर हमला कीता। 1971 दे जंग दे बाद पहली बार सी कि पाकिस्तानी पंजाब दे विच फौजी हमला कीता। ते ए हिंदुस्तान दी मिलिट्री हिंदुस्तान दी गवर्नमेंट दी एक इच्छा शक्ति एक मजबूत इरादा एक मजबूत डिसीजन मेकिंग दा बेहतरीन ग्राउंड दे उपर मुजहरा सी।
1: NDA सरकार दहशतगर्दी खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करन दी नीति प्रति दृढ़ अते वचनबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तो मैं राजेश बाली।
0: तरल कुदरती गैस LNG लैके आ रहे टैंकर दिशा ने हॉर्मुस पांचोट नूं सुरक्षित ढंग नाल पार कर लिया। पछमी एशिया में जंग शुरू होने तों बाद इस जल मार्ग तों लंघन वाला पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर च 62,370 मीट्रिक टन LNG है। यह अमरीका ते ईरान दरम्यान एक शुरुआती जंगबंदी समझौते के ऐलान तों बाद हॉर्मुस पांचोट तों लंघन वाले पहले व्यापारक जहाजों विचों एक है। केंद्रीय गृह सकत्तर गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा तो पहला सुरक्षा ते तैयारियां दी समीक्षा करन लई एक उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। उन्होंने विद्यार्थियों की सहूलत सुरक्षा प्रबंधा ते परीक्षा प्रक्रिया की निरपक्षता ते विशेष ध्यान दिंदिया मुड़ परीक्षा लई सूबा सरकारां दीआं तैयारियां दी समीक्षा कीती। गृह सकत्तर ने सारियां राज सरकारां केंद्र शासित प्रदेशां ते केंद्रीय एजेंसियां नूं सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना करन दे निर्देश दित्ते ने। श्री मोहन ने राज्यां ते केंद्रीय शासित प्रदेशां नूं विद्यार्थियों लई सुचारू यात्रा यकीनी बनाउण दी अपील कीती। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पूरा सहयोग देण दा भरोसा दित्ता है। अयोध्या के राम मंदिर विच दान ते कीमती वस्तां दी दुरवरतों के इल्जामां लई जांच वास्ते बनाई गई विशेष जांच टीम SIT ने आज अपनी जांच शुरू कर दी है। SIT की अगवाई लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इस विच पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल किरण एस अते वित्त विभाग के विशेष सकत्तर नील रतन इसके मैंबर ने। सारे मैंबरां ने कल अयोध्या कमिश्नर अते जिला मैजिस्ट्रेट के नाल राम मंदिर कॉम्पलैक्स का दौरा किया। अमरीका ते ईरान ने लगभग 4 महीने के लंबे टकराव नूं खत्म करने लई एक समझौते ते सहमति जताई है। इस नाल पछमी एशिया च तनाव घट होण दीआं उम्मीदां वध गईआं ने। दोवां मुल्कां दे अधिकारियां मुताबक समझौता पत्र ते डिजिटल ढंग नाल दस्तखत कीते गए ने ते रस्मी दस्तखत शुक्रवार नूं स्विट्जरलैंड दे जुनेवा च होणगे। इस समझौते नाल

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ई आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाब दी पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं जी। एमी विर्क दा गाया फिल्म सूफना दा ये गीत लो जी, तुसी भी इंजॉय करो।
5: पिंड ने गुरुद्वारा नहीं बनाया दा सांझा जा रब।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों महक पंजाब दी ते पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च अगला गीत तुहानू सुनान जा रहा है फिल्म बुर्रा चो युवराज हंस दा गाया गीत। लो जी तुसी भी चुमो इस गीत ते।

0: पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने अज दिया मुख्य खबरां। सलोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू सलोवाकिया दे सर्व उच्च सम्मान द अवार्ड ऑफ वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास नाल सम्मानित कीता। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस दे इवियान विच G7 शिखर सम्मेलन च हिस्सा लेंगे। श्री मोदी कैनेडा अते इंग्लैंड दे प्रधानमंत्रियां अते संयुक्त अरब अमीरात दे राष्ट्रपति नाल मीटिंग भी करेंगे। सरकार ने डीजल अते हवाबाजी टरबाइन ईंधन दे ते बरामद ड्यूटी वधाई। पेट्रोल ते बरामद ड्यूटी विच कोई तब्दीली नहीं। सरकार ने उत्तरी रेलवे दे अंबाला डिवीजन लई 201 करोड़ रुपए दे कवच प्रोजेक्ट नू मंजूरी दित्ती। भारतीय टैक्स दिशा ने 62,370 मीट्रिक टन LNG नाल हॉर्मूज पन जोड़ नू सुरक्षित ढंग नाल पार कीता। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष सोध SIR 2026 तहत घर घर गणना 25 जून तो 24 जुलाई तक होगी। भारतीय फौज दी वजर कौर वालों देशवासियां नू गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब फिरोजपुर च हुसैनी वाला यादगार अते फिरोजपुर दे किले दियां जंग प्रभावित कंधां अते पाकिस्तानी टैंकां दे कब्रस्तान वजों जाने जांदे खेमकरण कस्बे विच आसल उतार दे दर्शन करन दी अपील। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन ने रूपनगर जिले विच अवारा कुत्तियां दे हमले कारण 8 साला बच्ची दी मौत होण दा अपने तौर ते नोटिस लैंदिया पंजाब दे मुख सकत्तर नू 2 हफ्तिया अंदर मामले दी वेरवे सहित रिपोर्ट पेश करन लई कहा है। अयोध्या दे राम मंदिर विच दान अते कीमती वस्तां दी दुरवरतों दे इल्जामां दी जांच लई बनाई गई विशेष जांच टीम ने अपनी जांच शुरू कीती। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पछमी राजस्थान जम्मू कश्मीर लद्दाख के कुछ हिस्सों में गरज चमक नाल तेज हवावां चलन की पेशनगोई कीती। ऐ सन अज दियां मुख खबरां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेरे 9:03 हो रहे ने ते हुण वेला हो चुका है जी फिल्म म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम दा। ते इस प्रोग्राम च अज असी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म बारे तुहानू जानकारी देवांगे ते नाल दे नाल असी तुहानू गीत भी सुनावांगे। दोस्तों हिंदी सिनेमा दी दुनिया विच कुछ फिल्मां इहो जिहियां हुंदियां ने जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करदियां सगों एक डूंघा संदेश भी दे जांदियां ने। अज असी गल करांगे जी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम दी। इस फिल्म दा जिहड़ा निर्देशन है दोस्तों वो कीता सी मशहूर फिल्मकार राज कपूर ने। ते दोस्तों जेकर असी गल करिए इस फिल्म बारे

दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म है जो सानू एक बहुत वड्डा सवाल पूछती है कि असी लोकां नू उहनां दे दिल नाल पछाणने आ या सिर्फ उहनां दे चेहरे नाल। फिल्म दी जिहड़ी नायिका रूपा सी, जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि उहदे चेहरे ते निशान सी, पर उहदा जिहड़ा दिल सी दोस्तो उह बहुत सोहणा हुंदा है। उत्थे फिल्म सानू इह वी सिखांदी है कि असली सुंदरता इनसान दे विचारां, उहदे सुभाअ ते उहदे रूह 'च हुंदी है। शायद इसीलिए फिल्म का नाम जड़ा है वह भी रखा गया सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सच्चा है वही शिव है ते वही असल सुंदर है। दोस्तों, अज भावें यह फिल्म कई दहाकियां पुरानी हो चुकी है, पर इहदा जिहड़ा संदेश है वह अज भी उन्ना ही नवा लगता है। अज के समय च जो लोग अक्सर बाहरी दिखावे नूं ज़्यादा महत्व दे रहे ने, इंपोर्टेंस दे रहे ने, यह फिल्म सानूं यह याद दवाती है कि इंसान की पहचान उहदे दिल तो होनी चाहिए, उहदे चरित्र नाल हुंदी है। तो यही गल है जी कि इस फिल्म जिहड़ी यह फिल्म है वह आम प्रेम कहानी तो इस फिल्म नूं वक्खरा बनाती है। तो जाते जाते आओ सुनते हैं इसे खूबसूरत संदेश के नाल इस फिल्म दा एक होर सदा बहार की।

हुने तुसे ही सुनिया। फिल्म म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म दे गीत मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने गजलां।

नमस्कार दोस्तों, दिन दा वेला होवे या शाम दा समा होवे या रात दा कोई खामोश पल, कुछ एहसास ऐसे हुंदे ने जो सिर्फ गजलां ही बयान कर सकदियां ने। अल्फाजा दी नज़ाकत, जज्बातां दी गहराई ते दिल दियां अनकईयां गल्लां नूं अपने अंदर समेटे अज दी इस खूबसूरत महफिल च तुहाड़ा स्वागत है। मैं तुहाड़ी दोस्त शुभिता, ते अगले कुछ पलों तक असी इकट्ठे करांगे जी गज़लां दी इस सोहणे जे सफ़र नूं, ते जिथे हर शेर हर एक गज़ल एक एहसास बन के दिल तक पहुँचेगा। ते आओ इस महफिल दी शुरुआत करदे आं गज़लां दे बादशाह जगजीत सिंह जी दी एक बेहद खूबसूरत पेशकश दे नाल।

वाह दोस्तों, कई बारी दिल ओ गल्ला कह जाता है जो लफ्ज़ कदे नहीं बयां कर सकते, ते लफ्ज़ां विच कहना आसान नहीं हुंदा। दिल दी जिहड़ी आवाज़ है वह भी कमाल दी हुंदी है, ना कोई शोर ना कोई जिद, पर फिर भी सीधी रूह तक पहुँच जाती है। ते जगजीत सिंह जी दी जिहड़ी आवाज़ है जदों ऐसे एहसासां नूं छू लैंदी है तां गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। चलो जी, इसे खूबसूरत एहसास के नाल अगे वधदे हां ते सुनदे हां एक होर दिल नशीन गज़ल।

एहसास छट जाएगी। कहते नहीं कि जिंदगी विच तां जिहड़े ने ओह प्यार हर कोई करता है। यह सिर्फ एक गज़ल नहीं सगों मुहब्बत दी उस डूंघाई की गल करी कि जिहड़ी अगली गज़ल तुहानू सुनाउण जा रहे हैं। इंसान सिर्फ जिहड़ा है प्यार करता है सगों यादां विच वी नाल दे नाल वस जांदा है। कहिंदे ने कि सच्ची मुहब्बत भी पहचान जिहड़ी है वह खुशियां विच नहीं सगों उहनां पलां च हुंदी है जदों कोई साडे दिल च वसदा रहिंदा है ते भावें वह साडे कोल होवे या फिर ना होवे। आओ फिर इसे महफिल च सुनदे हां शहनशाह ए गज़ल मेहंदी हसन साहब की ए बेमिसाल पेशकश।

वाह जी वाह, किन्नी खूबसूरती नाल ए गज़ल एक उम्मीद, एक अरदास ते एक विश्वास दी गल कर गई। ते इसे सोने जे एहसास नू अपनी आवाज़ विच सजाया चंदन दास जी ने। दोस्तों, कई गज़लां सिर्फ सुनिया नहीं जांदियां, सगों दिल दे किसी कोने विच जाके वस जांदियां ने। ते मेहती हसन साहब जी की आवाज़ विच पेश हुन अगली गज़ल कर रहे हैं, जो कुछ

वाह दोस्तों, मेहदी हसन साहब की आवाज़ का जादू भी कुछ ऐसा है कि हर शेर सिद्धा दिल च उतर जाता है। गज़ल सानू याद दवाउंदी है कि मोहब्बत सिर्फ पाउण दा नाम नहीं, सगों किसी नू दिलों महसूस करन दा नाम भी है। दोस्तों, कई बारी दिल विच उठन वालियां लहरां दा कोई नाम नहीं हुंदा, ना उना दा कोई पता हुंदा है, ना कोई वजह है। बस एक एहसास हुंदा है जो खामोशी नाल दिल दे दरवाजे ते दस्तक दे जांदा है। ते जदों ऐसे एहसासां नू अल्फाज मिल जाण ते उना अल्फाजां नू गुलाम अली साहब दी आवाज़ मिल जावे तां गज़ल एक वक्री ही रंगत लै लैंदी है। ते आओ जी सुनदे हां गज़ना दे इस महफिल दी आखरी गज़ल, गुलाम अली साहब दी आवाज़ विच बेहद खूबसूरत गज़ल, तुसी भी सुनो।

लता मंगेशकर दी आवाज़ च तुसी सुन रहे सी फिल्म महबूबा दा एक गीत। प्रोग्राम चल रहे जी हैलो फरमाइश, आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़े कॉलर तुस लेके आए ने। हैलो हैलो, शायद एक बार फिर तो किसी टेक्निकल एरर दी वजह नाल जिहड़ा कॉल है वो डिसकनैक्ट हो गया है, लेकिन कोई गल नहीं जी, कोशिश असी करते रहेंगे तुहाडे नाल जुड़न दी। फिलहाल हुन इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनान जा रहे हैं जी, फिल्म आदमी सड़क का, इस चो मुहम्मद रफ़ी दा गाया गीत जड़ा है वो तुसी भी सुनो। ते प्रोग्राम हालो फरमाइश तुसी साडे नाल कनैक्ट कर सकते हो, दे लिए 0181 43 173 नंबर डायल करो, कोशिश करो, असी भी इतों कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी तुहाड़ियाँ कॉल्स अटेंड करन दी, ते तुसी भी ट्राई करते रहो। फिलहाल मुहम्मद रफ़ी दा गाया गीत सुनो।

लता मंगेशकर दी आवाज़ चो फिल्म चांदनी आएगी तो तुसी इंजॉय कर रहे सी, प्रोग्राम चल रहा है हेलो फरमाइश। आओ जानते हैं कि अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हेलो हेलो, एक बार फिर तो कुछ टेक्निकल एरर करके शायद कॉल नहीं लग रही है, लेकिन ऑन एयर नहीं पर असी लाइव नहीं, लेकिन ऑफ एयर तुहाडियां जिहड़ियां फरमाइशां ने वो जरूर साढ़े तक पहुँच रही ने, तो जिहड़ी असुविधा हो रही उहदे लई असी माफ़ी चाहवांगे। तो अगला गीत हुण इस फिल्म जिहड़ी है वो असी तुहानू सुनाण जा रहे हैं जी। फिल्म है जी हाथी मेरा साथी, जो किशोर कुमार दा गाया गीत, तुसी भी इंजॉय करो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: तुरंत सम्मानजनक हल हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है
1: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा
0: जरूरी नहीं तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो
1: अप्लाई किवें करिए
0: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है सहायता लई 01-23-11-2428 ते संपर्क करो
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा
2: एक विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन फोन नंबर है 0181-298-3036 ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in
0: सत श्री अकाल पंजाबियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है
1: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा
0: जरूरी नहीं तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो
1: अप्लाई किवें करिए
0: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है सहायता लई 01-23-11-2428 ते संपर्क करो
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा
2: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 कीता जा रहा है सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है प्रोग्राम चल रहे जी हेलो फरमाइश ते अंतराल तो बाद एक बार फिर तो असी लाइव फोन इस प्रोग्राम च तुहाडे नाल जुड़ चुके हैं ते आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च हुण फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने हैलो हैलो शायद टेक्निकल एरर करके अज जिहड़ियां कॉल्स ने वो कनैक्ट नहीं हो पा रही असी तुहाडे नाल गलबात नहीं कर पा रहे लेकिन लाइव नहीं पर असी ऑफर जरूर तुहाडियां फरमाइशां जिहड़ियां ने वो साढ़े तक पहुँच रही ने ते कोशिश कर रहे हैं असी उन्होंने पूरियां भी करिए ते हुण इस प्रोग्राम च अगला गीत असी सुनान जा रहे हैं जी महेंद्र कपूर ते आशा भोसले की आवाज़ च चिंगारी फिल्म का एक गीत है लो जी तुसी भी इंजॉय करो ते हाँ जी बेशक कॉल नहीं करेक्ट हो रही है पर तुहाडियां फरमाइशां साढ़े तक पहुँचनियाँ बहुत जरूरी ने उहदे लिए जी तुसी कॉल कर सकते हो नंबर है 01-81-23-42-173 कॉल करो प्रोग्राम च अपनी फरमाइश दसो ते अज जिहड़ी असुविधा हो रही है उहदे लिए असीं माफ़ी चाहवांगे पर मनोरंजन च बिल्कुल भी किसी भी तरह की असुविधा नहीं होएगी जी गीत जरूर सा नाल नाल असीं प्ले करते रहांगे फिलहाल सुनो जी चिंगारी फिल्म का एक गीत

महेंद्र कपूर थे आशा भोसले दी आवाज़ से। तो उसे सुन रहे सी जे गीत प्रोग्राम चल रहा है। हेलो फरमाइश ते आओ एक बार फिर तो कोशिश कर दे हाँ तो देखते हैं कि केड़े कॉलर साढ़े नाल जुड़े ने। हैलो हैलो नहीं एक बार फिर तो कॉल जड़ी है नहीं कनेक्ट हो पाई लेकिन कोई गल नहीं जी। हुण इस प्रोग्राम च अगला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं जी फिल्म प्यार ही प्यार चों मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत। लो जी तुसी भी इंजॉय करो इस सोहना जिहा गीत।

मोहम्मद रफ़ी दी आवाज़ जो तुसी सुन रहे सी जी, बहुत सोहना जिहा गीत फिल्म प्यार ही प्यार जो ते प्रोग्राम हलो फरमाइश। हुन अगला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं जी, बॉम्बे फिल्म चों चित्रा दा गाया गीत। ये भी बहुत दिल नू छू लेने वाला गीत है। लो जी, इंजॉय करो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर

0: एवियां पहुंचेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 11:05 वज रहे ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंती। जी दोस्तों, ये प्रोग्राम खास तुहाडे वास्ते तैयार किया जाता है क्योंकि इस प्रोग्राम विच तुसी भी शामिल होंदे हो। जी हाँ, वो किस तरह? वो इस तरह कि वट्सअप के जरिए तुसी सानू अपने मनपसंद गीतों की फरमाइश करते हो तो असी उन्होंने गीतों की फरमाइश तुहाडे तक पहुँचा देने तुहाडा नाम लैके। सो दोस्तों, करना की है कि तुसी अपना नाम ते उस गीत दे बोल टाइप करके सानू भेजने ने जिस गीत नू तुसी साडे कोलो फरमाइश करके सुनना चाहते हो, ते नाल दे नाल अपने शहर या पिंड दा नाम भी सानू टाइप करके भेजो ताकि तुहाडा पूरा पता भी असीं

रंग बिरंगे गीत असी सुन रहे हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंती दे विच ते अगली फरमाइश पढ़न जा रही हैं। ये फरमाइश सानू आई है जी श्री फतेहगढ़ साहब तो, ते फरमाइश भेजन वाले ने रामनाथ अतापुरी, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली जिहड़ी फरमाइश आई है जी सानू, वो फरमाइश आई है जी गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो, ते फरमाइश भेजन वाले ने प्रीतम दास अंगुराना, सत्या देवी अंगुराना, पोतरी वानिया ते पोते अरमान वालों फरमाइश है जी, अविराज कनेडा ते काका देवयंक अंगुराना ते पूरी अंगुराना फैमिली फरमाइश कर रही है। इन्हां नूं कंठ कलेर की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, तो कंठ कलेर की आवाज़ में ही फिर गीत सुनना चाहते हैं। पिंड बाजीदमपुर पोमा तो बलजीत सिंह, बलदेव सिंह पेंचरां वाला, वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह, ते बहुत ज़्यादा उन्हें दे साथी। उन्होंने ना ये भी शिकायत की थी कि एक हफ्ते तो ये सानू फरमाए भेज रहे मैसेज, इन्हों का नाम नहीं पढ़ते पे, पर नहीं इदा की कोई गल नहीं, देखो असी तुहाडा नाम पढ़ दिता, बहुत सोहनी तरह तुहाडा नाम पढ़िया, हुण लगता तुहाडी शिकायत दूर हो गई होनी आ। तो अगली फरमाइश सानू आई जी शेरपुर थाना जिला संगरूर तो, फरमाइश भेजिए मिंटू संपल, अमनजोत सिंह संपल, बिंदर खेड़ी, परमजीत सिंह पुरबा धुरी होर वालों। अगली फरमाइश आई है जी सानू चकलां बाजार समाणा तो, ये फरमाइश सानू आई है जी पप्पू राजा कुशदिल, संगीता राणी जिंदल, पप्पू समाइल कुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक कुशदिल, पूरा कुशदिल परिवार फरमाइश कर रहा है। तो बहुत सारे गुलाब के फुल इन्होंने हमेशा की तरह अपने मैसेज के नाल सानू भेजे ने। अगली जिहड़ी फरमाइश आई है जी फाजिलका पंजाब तो, फरमाइश भेजने वाले ने भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, तो उन्होंने बहुत सारे साथी सेम गीत की फरमाइश कर रहे हैं। अगली बाजार च अगली जिहड़ी फरमाइश आई है जी सानू मेन बाज़ार शेरपुरा तो भेजन वाले ने फरमाइश इंजीनियर अमनजोत सिंह, इंजीनियर रमनजोत सिंह ते मिंटू होरी, ते इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ सुनदे हां आपां सारे कंठ कलेर दी आवाज़ विच एक गीत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3:12 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता

0: चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियावेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 12 बज रहे ने, 12:05 वज चुके ने। आओ हुण सुनदे हैं पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों

0: के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियान पहुंच रहे हैं, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे, जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जनूब की आवाज़ और तशवीश को ज़ोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहाँ पहुँचने पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों वज़ीर-ए-आज़म का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क़याम और बैन-अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़सर नौ तशकील। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कैनेडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के

0: वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्के हैं। इसके बाद जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म जुमरात की सुबह सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। बाद में वो यूरोप की सरकर्दा टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी से मुतालिक प्रोग्रामों में से एक वीवाटेक समिट में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि वो समिट से खिताब भी करेंगे। शाम में वज़ीर-ए-आज़म एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और वहाँ आबाद भारत निजात अफराद से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी होंगे जिसमें भारत की शानदार विरासत की झलक पेश की जाएगी और भारत फ्रांस के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फन और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ताकत होती है। उन्होंने ये बात स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इस ब्रातिस्लावा में बनारस की एक झलक करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वज़ारत खारजा ने कहा है कि यह नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी जिसमें रूहानी सकाफती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होने वाला है और इससे कबल सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हिदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके अगले रोज़ तक नाफिज रहेंगी। मज़कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। एजेंसी ने कहा है कि उसकी टीमें सभी उम्मीदवारों के लिए बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाने की खातिर सर्वर पर लोड की लगातार निगरानी कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोशी फरोख्त करेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक जाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह के सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोशी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज़ और रियासतों से जवाब तलब किया है जिसमें शहरियत आबाई मकाम और रिहायशी पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड के मुबैना बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़कूरा दरख्वास्त में ये हिदायत देने की अपील की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक तक महदूद रखा जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़ और सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। मज़कूरा दरख्वास्त में ये दलील दी गई है कि फॉर्म 6 के तहत तस्दीक का मौजूदा तरीक़ेकार नाकाफ़ी है और इसका सहारा लेकर लोग मुनासिब और मुतालिक दस्तावेजात के बग़ैर चुनाव डेटाबेस में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता दहाई के दौरान बुनियादी ढांचे को रिकॉर्ड सतह पर जदीद तर्ज पर ढाला गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर MyGOV की एक पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने की खातिर मुल्क के लोगों के लिए नए सिलसिले का बुनियादी ढांचा तामीर करने की पाबंद है। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मेंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में।

0: मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध

0: कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर

0: 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब वक्त है कार्यक्रम किसान की बात।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे ढाई बज रहे ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च मदन लाल चंचल ते साथियों कोलों तुसी माता दियां भेटां सुनोगे।

सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन ते पूरा गुर गिल परिवार जिला लुधियाना तो लिख रहे ने। पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन, अरुणा अक्षण अक्षम, गौतम रसगुल्ला ते नगीना जैन। मुलापुर दाखा मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, बिट्टू जैन, टीटू जैन, जे बी राव। मुलापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू आशीष, बिट्टू जैन, दीपक जैन। चौंक बत्तियां वाला पिंड माधोपुर तो जिला श्री फतेहगढ़ साहिब, बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, राजकोल, ज्योति गोल्डी, रामलाल खरोड़ा, बब्बू टिवाणा यूएसए अते सारा माधोपुरी परिवार। श्री गंगानगर तो लिख रहे ने बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। तो इन्हां सारिया ने सानू रली मिली फरमाइश की है जी, सानू शाजिया मंजूर की आवाज़ सुनाया जाए गीत। लो जी पेश है शाजिया मंजूर की आवाज़ ये गीत।

0: जदू जदू भी बने रे भुलका मैनू तेरे सोवे मेरे सजना
1: जी। प्रोग्राम दा आखरी गीत सुनान जा रहे हैं फिल्म लौंग लाची चो लिया गया आवाज़ा एमी विर्क ते मन्नत नूर दियां।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माह मिटावो। ये फरमान गौड़ी सुखमणी महला पंजवां बाणी विच्चों है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं सदा उस अकाल पुरख प्रभु नूं सिमर सिमर के उसनूं चेते करके सुख प्राप्त कर लिया है, ते मेरे मन अंतर विच्चों सारे दुख कलेश निवृत्त हो गए हन। उस प्रभु दा सिमरन कीतिया दुख पलायन कर जांदे हन। उना प्राणियां नूं जमां दा दुख नहीं सतौंदा। प्रभु दा सिमरन करन वालियां दे नज़दीक किसे प्रकार दा डर नहीं आउंदा। प्रभु दा सिमरन करन वालियां नूं कदे कोई दुख नहीं सतौंदा। इसे करके प्रभु दे प्यारे जन अपने मन अंतर दे विच उस प्रभु दा नाम सिमरदे हन, उसनूं चेते करदे हन। हर जन सिमरह हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवै पूरन दास के काम। सरवण करदे हां भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: हर जन सिमरह हृदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम। इस शब्द गायन कीता सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बचित्तर सिंह।
1: जित श्री महला पंजवां, हर जन सिमरहो हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवे, पूरन दास के काम। रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा, निश्चल गोविंद ताम, भगवंत भगत को पाओ किछ नाही, आदर देवत जाम, तज गोपाल आन जो करणी, सोई सोई बिन सतकाम, चरण कमल हिरदय गोह नानक, सुख समूह विश्राम। ए पावन शब्द पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रसना तो राग जैतसरी विच उचारण किया होया है। ते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 702 उत्ते सवायमान है। इस शब्द अंदर सतगुरु जी परमेश्वर के सिमरन की बरकत और उस प्रभु का नाम जपण वाले गुरसिखा की महानता का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, हर जन सिमरहो हिरदय राम, हर जन को अपदा निकट न आवै, पूरन दास के काम। रहाओ शब्द दियाँ रहाओ दियाँ पंक्तियाँ अंदर शब्द का मुखसार हुंदा है। शब्द के आरंभ दियाँ इस रहाओ वाली पंक्तियाँ अंदर गुरु साहब फरमाते हैं कि हरी जे दे जन भाव गुरमुख मन करके उस निरंकार का नाम जपते हैं, इन्हां भगत जनां नूं कोई भी मुसीबत नहीं आती, भगतां दे सारे ही काम प्रभु आप ही सवार दिंदा है। शब्द दियां इन्हां उपरोक्त सत्रां अंदर एक बहुत वड्डी फिलासफी छिपी हुई है, जिन्हां तो यह जग्यासा मन विच पैदा हुंदी है कि हर जन कौन है, उसकी पछाण की है, हर जन किवें बनिया जा सकता है, हर जन बनन तो बाद उसनूं की प्राप्त हुंदा है। तां इन्हां सवालां दा जवाब भी सानूं गुरबाणी अंदर ही प्राप्त हुंदा है। असल विच हर जन एक विशेषण है। व्याकरण अनुसार किसी वस्तु जां व्यक्ति दे गुणां नूं प्रगटाउण वाला अखर विशेषण कहाउंदा है। गुरबाणी अंदर सानूं हर जन दे नाल नाल ही

0: इतनी महिमा है। सुन दे कमलजीत कौर होरां पासों वार्ता, प्रभ को सिमरै से पतवंते।
1: प्रभ तो भाव उस एक अकाल पुरख परमात्मा तो है, जिस दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक किया गया है। सारी सृष्टि का सिरजनहार है, उसनू पैदा करन वाला कोई नहीं। उसका प्रकाश अपने आप तो है, ते ऐसे परमात्मा दे गुण गाउन दा आदेश गुरबाणी विच है। थापिया ना जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। सिमरन दा अर्थ है याद करना जा याद रखना। उस सर्वव्यापक जोत नू हर थां पसरी जान के शब्दां राहीं उस दियां सिफतां करनियां, पढ़नियां, सुननियां ते गानियां ही सिमरन है। परमात्मा नाम सिमरन करन वालियां ते अपनी कला वरता के इतनी वडियाई बख्शदा है कि उन्हां दे चरणां ते सारे संसार नू लिया के रख दिंदा है। हर पासे इज्जत मान मिलता है। जिनको आप दे वडियाई, जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए। डरिए ताजे किच आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए। मनुख दे कोल चाहे जिन्नी मर्जी धन दौलत होवे, चाहे उसको लखां दी गिनती विच सेना होवे, चाहे जिन्ने मर्जी व्यक्ति हर समय उस दी नौकर दे रूप विच हाजरी भरदे होन, भावें लखां ही व्यक्तियां ते उसका हुक्म चलदा होवे, लखां ही दूजे अमीर उसकी इज्जत करदे होन, पर जद तक उस ते उस अकाल पुरख दे दरबार विच इज्जत नहीं, ता उस दी इस दुनियावी मान जो कि केवल एक बारी दिखावा मात्र ही है, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु नानक देव जी का फुरमान है, लख लश्कर लख वाजे नेजे, लख उठ करे सलाम, लखा ऊपर फुरमाइश तेरी, लख उठ राखे मान, जापत लेखे ना पवै ता सब निराफल काम। सिमरन करन वालियां रूहां दे अंदर रब वसदा है, सब नाल प्यार करते हैं, सब दे दुख दर्द दे भाईवाल बनते हैं। परमात्मा का नाम एक ऐसा पारस है जड़ा गरीब ते नीवी जात दियाँ सब विथां मिटा देता है। जिमें केसर फुल कस्तूरी चंदन हरेक नू सुगंधी देंदे हैं, इस तरह परमात्मा दे भगतां अंदरों भी सब तरह के भेदभाव मिट जाते हैं। जिस किसी ने भी ये नाम सिमरिया, चाहे वह नीवी जात का भी होवे, संसार ने उसका आदर मान किया। भगत कबीर जी ने भगती की, जगत विच प्रसिद्ध होए। नामदेव जी ने भगती करके परमात्मा नू वस विच कर लिया। सिमरन दा सदका भगत रविदास जी अगे उच्ची जात वाकले आ के सिर निवाउण लग पए। गुरु नानक साहब ने भी अपनी बाणी विच फरीद जी नू शेख लिखिया है, कबीर जी नू भगत लिखिया है। नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए, पुछो बिदर दासी सुते किसन उतरिया कार जिस जाए। जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीरथ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को आंदिन परसे जे कृपा करे हर राय। नाम दी कमाई करन नाल जिथे उसके दरबार विच मनुख नू मान मिलता है, उत्थे मनुख वल्लों किते चंगे कर्म भी करतार दे नाम नू मनुख दे हिरदे विच वसाउण विच सहाई हुंदे हन। जदों दिन रात मनुख दे हिरदे विच उस परमात्मा दे नाम दा वासा हो जांदा है, ता उस दी कृपा सदका इस संसार रूपी सागर तो पार हो जांदा है। उस नू जो शोभा प्राप्त हुंदी है, वो दुनिया दियां सब तो उच्चियां पदवियां नालों उच्ची ते सदीवी है। वही मनुख अकल वाला है, इज्जत वाला है, पतवंता है, जिसनू परमात्मा दा हुक्म प्यारा लगता है। सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब विच वर्णन किया है कि जे मनुख चार जुगां जिन्नी सगों इस तो भी 10 गुना वध उम्र भोगे, अते अपने आले दुआले विच ही नहीं सगों सारी सृष्टि

प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरह मूचा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अर्जन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक

0: उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी दाई जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आहुन जानदे हां अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उनां दा प्रसारण समां।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वाली पंजाबी खबरों दा प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालों की कामयाबी की कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग की जुबानी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है आकाशवाणी दा अपना गीत यानी कि आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ
1: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर च लश्करे तैयबा LIT दे कारकुन नाल संबंधित एक घर नूं जब्त कीता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ पदरी मीटिंग च सावणी रुत 2026 लई देश भर विच तैयारियां दा विस्थार पूर्ण जायजा लिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों पंजाब भर दी औरत सरकारी मुलाजमान लई वड्डी राहत दा ऐलान। ग्रुप सी ते डी श्रेणी दियां औरत मुलाजमान नूं घरां तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे अंदर ही तैनात कीता जाएगा। पंजाब दे स्थानक सरकारां मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन क्लीन पंजाब तहत बीती अद्धी रात अमृतसर च रात्रि सफाई मुहिम दा जायजा लिया। ते औरतां दी हॉकी विच भारत ने न्यूजीलैंड च हो रहे FIH हॉकी नेशनस कप दे सैमीफाइनल विच थां बना ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर विच एक घर नूं जब्त कर लिया जो कथित तौर ते लश्करे तैयबा LIT दे कारकुन नाल एक अंतरराष्ट्रीय नारको दहशतगर्दी नेटवर्क वत मामले विच जुड़िया होया, जिस दे संबंध कई देशां विच फैले हुए ने। NIA ने कहा है कि यह जायदाद मुलजम अंकुश कपूर के पिता के नाँ से रजिस्टर की गई सी, जो कि इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, UAE और पाकिस्तान समेत होर देशों में फैले नारको दहशतगर्दी नेटवर्क का भारत में एक मुख्य कारकुन सी। एजेंसी ने दसिया है कि जांच में अंकुश से दुबई स्थित एक मुलजम नाल कथित संबंधा का खुलासा होया, जो पाबंदीशुदा दहशतगर्द तड़े LIT नाल जुड़िया होया है। इसने अगे किया है कि अंकुश, जिसनों पिछले साल गिरफ्तार किया गया सी, नशीले पदार्थों की कथित तस्करी, आवाजाई, भंडार ते वंड नाल संबंधित साजिश का एक बहुत महत्वपूर्ण कारकुन पाया गया सी। इस तो इलावा वह वख-वख देशों विच मुलजमान नूं दहशतगर्दी की कमाई की लॉन्डरिंग भी करता सी। यह भी सामने आया कि नशीले पदार्थों की तस्करी तो प्राप्त कमाई की वरतों एक पेचीदा ते व्यापक माली नेटवर्क राही भारत विच दहशतगर्दी गतिविधियां नूं रकमां ते हमायत देण लई कीती जा रही सी। दहशतगर्दी विरोधी एजेंसी ने पहला अंकुश ते NDPCS कानून ते IPC तहत अपराधा तो इलावा दहशतगर्दी लई रकमां जुटाउण संबंधी गतिविधियां, अपराधिक साजिश अते गैर कानूनी ते दहशतगर्दी नेटवर्कां नूं हमायत प्रदान करन विच उसदी भूमिका लई दोष लाए सन। NIA ने यह भी किया है कि इस मामले विच हुण तक कुल 26 मुलजमां नूं चार्जशीट कीता गया है, जिस विच जांच जारी है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी खेतीबाड़ी समीक्षा मीटिंग कीती अते सावणी रुत 2026 लई देश भर विच तैयारियां दा विस्थार पूर्ण जायजा लिया। खेतीबाड़ी मंत्रालय ने एक बयान विच कहा है कि संभावित अल नीनो स्थितियां दे संदर्भ विच उन्होंने कपाह दे उत्पादन नूं वधाउण, दालां विच स्वै निर्भरता प्राप्त करन अते घट बारिश वाले जिलों लई अगाउ संकटकालीन योजनावां ते विशेष जोर दिता। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिता कि किसानां दे हितां दी रक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगवाई हेठ सरकार दी सब तों वड्डी तरजीह है। मीटिंग विच इह यकीनी बनाउण ते भी ध्यान केंद्रित कीता गया कि रुत दौरान पैदा होण वालियां किसे तरह दियां भी मौसमी स्थितियां तों खेतीबाड़ी अते किसानां दी राखी लई सारे जरूरी कदम पहलां तों चुके जाण। श्री चौहान ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें जिलों में जिथे घट बारिश या आसमानी बारिश की संभावना है, पूरी तैयारी पहले तो ही की जानी चाहिए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी की संभाल, नमी प्रति प्रबंध, अंतर फसली ते विकल्पक फसली पटरना ते विशेष ध्यान दिता जाना चाहिए है। पंजाब भर दियां औरत सरकारी मुलाजमां लई वड्डी राहत विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज ऐलान किया कि ग्रुप सी अते डी श्रेणियां नाल संबंधित औरत मुलाजमां, जिन्हां विच स्टाफ नर्सां, औरत पुलिस मुलाजम अते होर योग मुलाजम शामिल ने, नूं उन्हां दा परख काल समां पूरा होण उपरंत उन्हां दे घरां तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे अंदर ही तैनात किया जाएगा। यह फैसला, जिसका उद्देश्य औरत मुलाजमां दे निजी जीवन अते दफ्तरी काम दरम्यान संतुलन नूं बेहतर बनाउणा है, नूं इतिहासक मुलाजम पक्षी पहल दसदिआं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार मुलाजमां, औरतां, नौजवानां अते समाज दे हर वर्ग दी भलाई लई दृढ़ता नाल वचनबद्ध है।

0: ने योग पतंजलि नूं योग दर्शन दा संस्थापक मन्या जांदा है। पतंजलि दे योग सूत्रां विच बुद्धि नूं कंट्रोल करन दी प्रणाली नूं राज योग दे रूप विच दस्या गया है। योग दे 8 अंग यानी अष्टांग योग इसदा आधार बन गया, जिस विच यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ते समाधि शामिल ने। योग ओ विज्ञान शक्ति जां चमत्कार है जो साड़ी जिंदगी नूं पूर्ण रूप विच बदल सकदा है। ग्लोबलाइजेशन दे समय विच अज हर कोई इन्ना मशरूफ है कि अपनी सेहत वल बेहतर ध्यान नहीं दिंदा। योग साड़ी जीवन शैली दी मशरूफियत, काम दे दबाव, टेंशना, घबराहट, चिंतावां नूं तां घट नहीं कर सकदा, बल्कि ये साड़े दिमाग नूं तरो ताज़ा रखन विच साड़ी मदद करके साड़ी आत्मा नूं सकून दिंदा है। योग करन नाल डिप्रेशन, मोटापा, जोड़ां दे दर्द, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर तो इलावा कई बीमारियां विच बहुत आराम मिलता है। अमीर तो लैके गरीब, बुजुर्ग तो लैके जवान तक सारे इसनू आराम नाल कर सकते ने। विभिन्न आसना नाल शरीर दिया मांसपेशियां नू खिच के सिकोड़ के शरीर दे मानसिक ते शरीरक तनाव नू दूर किता जांदा है, जिस नाल शरीर नू शक्ति मिलती है ते मन शांत हुंदा है। इस तो इलावा योग शरीर दे तनाव नू घट करन, फेफड़ियां दी समर्था विच सुधार करन, दिमाग नू ताजी हवा देन च, ब्लड प्रेशर नू नियंत्रित करन, कमर दर्द विच राहत देन, हड्डियां नू मजबूत बना के दिल दियां बीमारियां दा खतरा घटांदा है। पाचन किरिया संबंधी समस्यावां च वी सुधार करदा है। महिलावां विच होण वाले मासिक धर्म संबंधी तकलीफां नू वी घट करन, अखां नाल संबंधित कई रोगां दा उपचार करन लई वी योग विच मदद मिलदी है। शरीर दी रोग प्रतिरोधक शक्ति वधाउण विच मदद मिलदी है, जिस नाल शरीर विच लचकता आउण नाल नवीं ऊर्जा पैदा हुंदी है। भारतीय सभ्यता दा इन्ना महत्वपूर्ण अंग योग साड़ी जिंदगी लई इक वरदान है, इसलिए सानू योग नू अपनी जिंदगी दा हिस्सा बना के इस दे इन्ने महत्वपूर्ण लाभां दा जरूर फायदा लेना चाहिदा है।
1: हां जी रुलिया राम जी, सुनी जी वार्ता।
2: बच्चा नरमे दे कीड़े ते इन्हां दी रोकथाम संबंधी डॉक्टर सुनीत पंधेर होरां को जानकारियां सांझियां कीतियां आपां सांझियां करदे आं।
3: देहाती प्रोग्राम दे सारे स्रोतियां नूं मेरा सति श्री अकाल। अज दे इस प्रोग्राम ते मैं डॉक्टर सुनीत पंधेर खेतरी खोज केंद्र पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी फरीदकोट तो आई हाँ, ते उत्थे सेवा निभा रही हाँ एज कीट विज्ञानी। ते अज दा जिहड़ा विशा है इस प्रोग्राम दा ओह है नरमे दे कीड़े अते उहनां दी रोकथाम। जे आपां गल करिए दखणी जिहड़ी पछमी साडे सूबे ने पंजाब दे, उत्थे नरमा एक मुख फसल है, क्योंकि उत्थे जिहड़े थलड़े पाणी ने ओह बहुत माड़े ने ते झोने वास्ते ओह सूटेबल नहीं हन। इस करके जिहड़ा नरमा है उत्थे एक बहुत ही मुनासिब फसल है। पर पिछले कुछ सालों ते अगर आपां झात मारीए तां नरमे दी जिहड़ी फसल है उहदी पैदावार बहुत थले जा रही है ते खर्चे वध रहे ने। इस करके किसान नरमे की फसल नू पैदा कंच थोड़े पिछे हट रहे ने। खर्चे घटाउण लई एक बहुत वड्डा जिहड़ा कारण हैगा वह है कीड़ियां दी सर्वपक्षी रोकथाम। जे असी कीड़ियां दी सर्वपक्षी रोकथाम नू अपनाइए तां असी अपने जिहड़े नरमे की फसल ते खर्चे आ बहुत घटा सकते हैं। अगर आपां नरमे दे कीड़ियां दी गल करिए वी किहड़े किहड़े फसल इस फसल ते कीड़ियां दा हमला हुंदा है, तां जिहड़ा मुख तौर ते इस वेले रस चूसण वालियां दा कीड़ियां दा हमला हुंदा है। रस चूसण वाले कीड़ियां चो सब तो जिहड़ा मुख कीड़ा है वह है चिट्टी मक्खी। चिट्टी मक्खी रस चूसदी है ते नाल ही नाल एक विषाणु रोग

0: खुशी का दिन है और मैं भी अमृतसर के साथ ये खुशी साझी करने आया था। 84 किलोमीटर इहदा सफर कटिया है ते सारे माझे नूं श्री अमृतसर साहब तो बटाला गुरदासपुर पठानकोट सारा माझा कवर हो रहा। ऐसी ट्रेनें चलती रहेंगी, कोई कमी नहीं आएगी।
1: उन्हां कहा कि भविख च अमृतसर तो श्रीनगर लई सीधी रेल गड्डी चलाने की भी योजना है। केंद्रीय मंत्री ने यह ऐलान भी किया कि अमृतसर तो चंडीगढ़ और हरिद्वार लई नवीं रेल सेवावां शुरू करने की भी योजना से काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वै गणना की म्याद पूरी होने तो बाद जनगणना 2027 के पहले गेड़ तहत घर के सूचीकरण और आवास गणना लई जमीनी मुहिम अज शुरू हुई। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य में जनगणना अधिकारियों वालों घर घर जाके सर्वेक्षण अगले महीने की 15 तरीक तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने दसा कि हुण तक 23 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों ने 2027 की मरदमशुमारी का पहला पड़ा पूरा कर लिया है। मकाना की सूची और आवास गणना के पड़ा दौरान रिहायशी हालात परिवारक वेरव्या उपलब्ध सहूलत परिवार की मालकी वाली जायदादों संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है। समाजिक न्याय ते शक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वरिंदर कुमार कल नशा मुक्त भारत मुहिम NMBA तहत नशा मुक्त भारत हफ्ते का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस पहलकदमी का उद्देश नागरिकों की भागीदारी मजबूत करना, स्वै सेवकों की शमूलियत वधाउणा ते देश भर में नशियां की दुरवरतों विरुद्ध जागरूकता फैलाउणा है। इस समागम दौरान डॉक्टर वरिंदर कुमार कई मुख्य पहलकदमियों का भी उद्घाटन करते हैं, जिन्होंने नशा मुक्ति मित्र लई एक निजी डैशबोर्ड और NMBA ते एक छोटी फिल्म भी शामिल है। समाजिक न्याय ते शक्तिकरण मंत्रालय ने कहा मुहिम दौरान देश भर में वख-वख जागरूकता ते भाईचारक शमूलियत गतिविधियां का आयोजन किया जाएगा। इन्हां विच समूहक सहुं चुक समागम, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, पोस्टर मेकिंग, लेख मुकाबले, वैबीनार, माहिर गलबात ते नुक्कड़ नाटक शामिल ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर च एक अंतरराष्ट्रीय नैरको दहशतगर्दी नैटवर्क मामले में कथित तौर पर लश्करे तौयबा दहशतगर्द धड़े के कारकुन नाल जुड़े एक मकान नूं जब्त किया है। NIA ने कहा कि मकान मुलजम अंकुश कपूर के पिता के नाँ ते रजिस्टर है, जो कि इटली, आस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, UAE ते पाकिस्तान समेत होर देशों में फैले नैरको अतवाद नैटवर्क का भारत में एक प्रमुख कारकुन है। एजेंसी ने दसिया कि जांच में अंकुश के दुबई स्थित एक मुलजम नाल कथित संबंधों का खुलासा होया, जो पाबंदीशुदा दहशतगर्द धड़े लश्कर ए तैयबा नाल जुड़िया होया है। इस विच अगे कहा गया कि अंकुश जिसनों पिछले साल गिरफ्तार किया गया सी नशीले पदार्थों की कथित तस्करी भंडार ते वंड नाल संबंधित साजिश का एक बहुत महत्वपूर्ण कारकुन पाया गया सी। सरकार ने उस सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया जिस विच दावा किया गया कि UPSC सिविल सेवावां की मुढ़ली प्रीख्या का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB की तच जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा बेबुनियाद है। इकाई ने कहा कि UPSC प्रीख्या के प्रश्न पत्र देश भर तो चुने गए विशा माहिरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। PIB ने लोगों को अजय गुमराहकुन ते गैर प्रमाणित दावे साझा करने तो बचने की सलाह दी है। अंत में चोणवीं खबर एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैण लई फ्रांस के एवियन पहुँच गए हैं। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली च एक उच्च पदरी मीटिंग दौरान सौनी रुत 2026 लई देश भर में की गई तैयारियों की वेरवे सहित समीक्षा की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वख-वख सभ्याचारां ते भूगोलिक स्थितियां के बावजूद भारत दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र वजों उभरिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हुण तक 23 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 2027 की मरदमशुमारी का पहला पड़ा पूरा हो गया है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। नमस्कार।
2: हुण तुसीं अगला प्रोग्राम सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो।
3: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
4: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री

0: भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
1: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
0: जी,
1: विश्वास और जनकल्याण
0: जी,
1: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
0: जी।
1: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
0: जी,
1: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जनकल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
0: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
1: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
0: जी।
1: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
0: जी।
1: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
0: जी।
1: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
0: जी,
1: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते।

0: उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहाँ पर मनुष्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं वहाँ PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहाँ से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी

0: मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है। इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफ़ी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में

0: ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति

0: कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है, उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है, ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है, ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है, ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है, वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है, वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन

0: ट्रांजिशन की ओर जाएं,
1: जी
0: अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है।
1: जी,
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। साढ़े अगले प्रोग्राम का इंतजार करो।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्हां ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच एक बारी फिर तो आप सब दा बहुत बहुत स्वागत है। असी प्रोग्राम दे शुरुआत च गल कर रहे सी कि इच्छा जदों इंसान दी खत्म हो जांदी है, ना सुख दी इच्छा रहिंदी है ना दुख दी इच्छा रहिंदी है, मतलब कोई चाहना ही नहीं रहिंदी है, उस वक्त इंसान नूं शांति या सुकून हासिल हो सकता है। कहिंदे ने कि इच्छा एक तो अपने मन दे विच भी ना रखो और दूसरा किसे तो कोई उम्मीद भी ना रखो। जदों असी किसे तो कोई उम्मीद रखते हाँ, कोई आस बना लैने हाँ किसे दे प्रति, तो जदों वो आस टुटदी है, वो उम्मीद टुटदी है ना, उस वक्त भी इंसान बहुत दुखी हुंदा है, बहुत परेशान हुंदा है। जिद्दां आपां मतलब अक्सर असी इदां ही करदे हाँ कि अगर किसे नूं मदद की लोड़ पै गई, किसी के कोई उत्ते औखी घड़ी आ गई, औखा टाइम आ गया, असी झट जाके उन्हां दी मदद कर दित्ती। अगर किसी नूं पैसे की जरूरत पै गई तां असी बाहरों चक के भी पैसे दे दिते, है ना, उन्हां दी हैल्प कर दित्ती। तो फिर मन दे विच ऑटोमैटिकली एक चीज़ बिठा लैने आपां कि बई जदों कभी मैनू लोड़ होएगी तो यह बंदा जरूर मेरे नाल खड़ा होएगा। तो जदों कितें इहो जिहा हो जाए कि बई जदों सानूं कोई लोड़ पै गई और वह इंसान हाज़र ही नहीं होया, वह सानूं विखिया ही नहीं, मदद तो दूर की गल, हो सकता है कि उसनू कोई परेशानी होवे या कोई प्रॉब्लम होवे या वह चाहता होवे मदद करना लेकिन ना कर सकिया होवे, लेकिन साढ़े मन दे विच ए आ जाती है कि लो जी जदों इनू लोड़ सी तां असी तां लोकां तो उधारे चक के पैसे भी दिते, इनू इहदी मदद की और अज सानू जरूरत है और यह बंदा सानू दिखदा ही नहीं पिया, किते किते पुछण ही नहीं आया, हाल चाल ही नहीं पुछण आया। फिर की हुंदा कि असी अपने मन दे विच उस दे प्रति कड़वाहट पैदा कर लैने आ, वह रिश्ता जिहड़ा बहुत प्यार या मुहब्बत या निघ वाला सी वह एकदम एक झटके दे विच टुट जाता है। रिश्ते जिहड़े टुटदे ने ना वह सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करके टुटदे ने, क्योंकि असी दूजियां तो उम्मीद रखी हुंदी है कि कुछ ना कुछ असी चाहिया हुंदा है, तो जदों वह इंसान तो उम्मीद साड़ी पूरी नहीं हुंदी फिर वह रिश्ते टुटदे ने, दिल टुटदे ने, तो कई बार इंसान आप भी टुट जाता है। इस करके जदों असी किसी तो कोई उम्मीद ही ना रखी होवे ना तो फिर टुटण का तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कि ठीक है तेरे तो कोई उम्मीद ही नहीं सी, ते नहीं ते ना सही, तू अपने घर राजी, असी अपने घर राजी, और रिश्ते भी बरकरार रहिंदे ने, ठीक रहिंदे ने। इस करके कहिंदे ने कि जिहड़ी आस जिहड़ी चीज़ है ना वह भी सिवाए दुख दे तुहानू कुछ नहीं दिंदी, इस करके आस किसे तो नहीं रखनी चाहीदी। सियाने कहिंदे ने कि आस ना रखी माया उत्ते, आस ना रखी धंदियां ते, आस ना रखी रिश्तियां उत्ते, आस ना रखी बंदियां ते, आस ना रखी अकलां उत्ते, समझां अते पढ़ाइयां ते, घर बार ते पुत्र धियां दौलत अते कमाइयां ते, किसी चीज़ ते भी आस रखण दी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि आस जदों टुटदी है ना तो फिर बहुत दिल दुखदा है। तो आस ते कहिंदे ने कि रब भी पूरियां नहीं कर सकदा इंसान दियां, तो रब तो भी जड़ा आसां जड़ियां लाइयां हुंदियां ने वह भी जदों टुटदियां ने ना तो फिर इंसान रब तो भी टुट जाता है। वह जड़ा भगत ते भगवान का रिश्ता हुंदा ना वह भी एक दिन टुट जाता है सिर्फ और सिर्फ इस आस की वजह करके, क्योंकि आस रखी सी वह पूरी नहीं हुई तो फिर ठीक है तू अपने घर राजी तो असी अपने घर राजी, फिर यह गल हो जाती है वह रिश्ता टुट जाता है। इस करके आस बड़ी खतरनाक चीज़ है, इस तो जिन्ना असी दूर रहेंगे चंगे रहेंगे, जिन्ने साधारण रहेंगे उन्नी ही जिंदगी जड़ी है सोहनी हो सकती है। तो इस तरह का एक गीत है, मैं बड़ा अज बहुत रेयर गीत है चलता है आकाशवाणी, तो मैं मिलया और मेरा दिल किया कि तुहानू सुनावा। तो यह गीत बहुत पुराना है, जॉनी वॉकर तो उन्होंने साथियों की आवाज़ के गीत है। तो आओ फिर सुनते हैं और ये तो भी सीखते हैं कि जिंदगी मस्त मौला रह के किदां जी जा सकती है।

0: करने की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ। क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक। स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: mastra.
1: Mastra, mastra, mastra, mastra, mastra, mastra, mastra.
0: Mastra, mastra, mastra,
1: mastra, mastra, mastra.
2: जी हाँ, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियाँ हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। जेकर कोई तारीफां भी करता है थोड़ियाँ तो कोई गल नहीं जी, हवा च नहीं उड़ना, बहुता फुल्ले नहीं समाना, ठीक है, तारीफां हो गई तो हो गई। तो जेकर कोई गालां भी कढ़दा है, बुरा भला कहता है तो कोई गल नहीं, कहता है तो कही जाए, सानू कोई फर्क नहीं। मस्त राम बनो, जो तुहानू सही लगता है वह करो, तो दुनिया की परवाह करन की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश यही रखना कि थोड़ा रस्ता जड़ा है वह सही होवे, तुहानू जरूर सही लगता होए। तो इसे ही नोट दे उत्ते साडा अज दा ये प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे ही खत्म हुंदा है।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर पेश है एक विशेष रेडियो रिपोर्ट, 12 साल बेमिसाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ देश ने पिछले 12 साल दौरान विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के खेत्र में नवे मापदंड स्थापित किए ने। बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, गरीब कल्याण योजनावां ते किसान भलाई लई कीते गए यतना ने देश की तरक्की नूं नवी दिशा दित्ती है। इन्हां सालां दौरान भारत ने विश्व पद्धर ते अपनी मजबूत पछाण बनाई है अते हर वर्ग दे लोकां दी भलाई नूं केंद्र विच रख के कई इतिहासक फैसले लए ने। सेवा, सुशासन अते गरीब कल्याण नूं समर्पित ए 12 साल देश दे विकास यात्रा दे महत्वपूर्ण पड़ाव वजों याद कीते जा रहे ने। इस मौके ते आकाशवाणी नाल अपने विचार सांझे करदे होए
5: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि डॉक्टर अंजना

0: भाटिया का नमस्कार। मोदी सरकार 12 बेमिसाल साल। अगर हम बात करें कि 12 सालों में मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, तो सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति की बात आती है। भारत विश्व की अग्रणी डिजिटल भुगतान तंत्र बन चुका है और यूपीआई ने तो करोड़ों लोगों के लिए देन लेन को सरल पारदर्शी बना दिया। जन धन आधार मोबाइल त्रिशक्ति जैम करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिया गया है और गरीब कल्याण योजनाओं के सारे पैसे अब सीधे खातों में आते हैं। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन आवास शौचालय नल जल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेमिसाल विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे रेलवे मेट्रो बंदरगाहें अभूतपूर्व विकास। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टार्टअप इनोवेशन, तो भारत में इसका इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये सारा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है और पीएम किसान जैसे किसान हितैषी योजनाएं ये भी बहुत ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती धारा 370 का हटना बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020, 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में एक व्यापक सुधार हुआ है और वैश्विक मंच पर G20 टेक्नोलॉजी निवेश कूटनीति इसमें भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की है। विकसित भारत का संकल्प है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हरित ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में नए लक्ष्य हैं। तो आइए हम सब भारत के बेहद सुखद भविष्य की कामना करते हैं।
1: मैं तीक्षण सूद एक्स कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब थानू सब नू बधाई देना चाहना कि मोदी जी आज भारत दे सब तो ज़्यादा लंबा समा लगातार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिहड़े रहे आ उन्हां दा हो गया है और ये भी अपने आप च एक रिकॉर्ड आ। 12 साल काम बेमिसाल ते ये मोदी जी ते जिहड़ा फिकरा है बिल्कुल फिट हुंदा है, पर मोदी जी ने वो करके दिखाया जिहड़ा किसी ने सोचा नहीं सी। अज साफ सुथरा शासन प्रशासन जो केंद्र दे विच मिल रहा सानू भ्रष्टाचार तो रहित, ये मोदी जी की सोच और उन्होंने दी देन है। और उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा लैके उन्हां लोगों लिए भी इन्ने ज़्यादा काम किए जिहड़े समाज के विच बेसिक सहूलतों तो भी वांझे सीगे, जिवें करोड़ां 50 करोड़ तो उपर 55 करोड़ तो उपर जनता कभी बैंक नहीं गई सी, वो देश के विकास के किदा हिस्सेदार हो सकती सी। उन्हां वास्ते जन धन खाते खुलवाए बिना पैसे जमा कराए, जिहड़ियां साडियां माता भैन धुएं तो परेशान सीगियां, उन्होंने गैस कनैक्शन नहीं मिलते सी, उन्होंने उज्ज्वला योजना ना करोड़ा ही गैस सिलेंडर बने, प्रधानमंत्री आवास योजना ना करोड़ा बेघरियां नूं छत मिली, स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ा ही टॉयलेट बनवाए गए, मुद्रा योजना तहत तो लखां लोगों नूं अपना कारोबार करने के अवसर मिले बिना सिक्योरिटी तो लोन दे के। सो इस तरीके दे नाल मेक इंडिया का नारा दे के उन्होंने हिंदुस्तान च लोगों ने इनकरेज किया कि इतने आके अपना काम करो, इतने का मैनुफैक्चरिंग करो। सो ये सारे बस चीज़ों के नाल अज पूरे देश की जनता विकास के रस्ते से तुरी है। और एक दो अभूतपूर्व गल् जड़िया हुई तारा 370 सब की इच्छा सी खत्म हो जाए, पर बड़िया अड़चन सी और मोदी जी ने वो बिना किसी प्रॉब्लम तो सारा तारा 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर नूं भारत का अटुट हिस्सा बनाया और अज जम्मू कश्मीर भी साढ़े बाकी राज्यां वांगर भारत का हिस्सा आ। भगवान राम जी का मंदिर लखां करोड़ां लोगों की आस्था का केंद्र सी, कदों मंदिर बनता उहदा रस्ता साफ किया मोदी जी ने अपने एफर्ट्स ना। सो दुनिया के विच भारत का ना मोदी जी ने अपनी मेहनत ना अपनी सूझबूझ ना एडा कुछा किया कि अज दुनिया भारत में एक वड्डी शक्ति मानती है। भारत जिहड़ा 11वें नंबर ते सीगा इकोनॉमिक पावर, अज चौथे नंबर ते आ चुका, अगले साल तीसरे नंबर ते आ जाएगा। साढ़े कोल बहुत वड्डा फॉरन एक्सचेंज स्टॉक आ, साढ़े कोल बहुत वड्डा इसलिए एक्सपोर्ट है। सो हर पक्षों भारत में एक विकसित भारत बनाने का सुपना शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने पहल की है कि असी जदों 100वां साल मनावांगे आबादी का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि

0: भी शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत

0: देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लो

0: इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधान

0: मंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability, and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit,

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जा लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
6: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 10 बज चुके ने। हुन पेश ने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई फ्रांस दे एवियान पहुंच गए ने। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली च एक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान सौनी रुत 2026 लई देश भर विच कीतियां गईयां तैयारियां दी वेरवे सहित समीक्षा कीती। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वख-वख सभ्याचारां अते भूगोलिक स्थितियां दे बावजूद भारत दुनिया दे सब तों वड्डे लोकतंत्र वजों उभरिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हुण तक 23 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां विच 2027 दी मरदमशुमारी दा पहला पड़ाव पूरा हो गया है। समाजिक न्याय ते शक्तिकरण मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार पलके नशा मुक्त भारत हफ्ते दा वर्चुअल उद्घाटन करनगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर च लश्करे तोयबा LAT दे एक कारकुन नाल संबंधित एक घर नूं जब्त कीता। केंद्रीय रेल राज मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू वालों आज अमृतसर रेलवे स्टेशन तो अमृतसर कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। ए रेलगड्डी अमृतसर बटाला गुरदासपुर पठानकोट अते जम्मू तवी राही कटड़ा तक मुसाफरां नूं आधुनिक अते तेज रेल सेवा मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों पंजाब भर दीआं औरत सरकारी मुलाजमां लई वड्डी राहत दा ऐलान। ग्रुप सी अते डी श्रेणी दीआं औरत मुलाजमां नूं घरां तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे अंदर ही तैनात कीता जाएगा। अमृतसर दी ड्रीम सिटी कलोनी विच जम्मू पुलिस अते अमृतसर देहाती पुलिस वालों सांझे ऑपरेशन दौरान एक फ्लैट तों एक AK-47 हथियार ड्रग बरामद होण दी खबर है। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਾਤਰੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਹਰ ਦਾ ਵਾਇਲਨ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਰਾਗ ਜੋਗ।

प्रोग्राम सरगम दा अगला नगमा फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा तो आवाज़ा सोनू निगम ते श्रिया घोषाल दियाँ। इस गीत दे बोल लिखे गरिमा वाहल ते सिद्धार्थ सिंह ने, संगीत दिता विक्की प्रसाद ने।

सरगम दा अगला गीत फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं तो आवाज़ा उदित नारायण ते अलका याग्निक दियाँ गीत बो लिखे समीर ने ते संगीत दिता अनु मलिक ने।

प्रोग्राम सरगम दा आखरी नगमा फिल्म वीर तो आवाज़ा रूप कुमार राठौड़ श्रेया घोषाल ते सुजैन डिमेलो दिया। इस गीत दे बोल लिखे गुलजार ने ते संगीत दिता साजिद वाजिद ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60

0: जी दोस्तों, हाय नी मेरा बालम है बड़ा जालम, मैनू करदा है कदी कदी प्यार। क्या बात है जी। वैसे ये जड़ा प्यार है ना, जे कदी कदी भी करदा है तो उस प्यार दी तांग बहुत हुंदी है। इस करके जड़ा प्यार मिलता है ना उनू ले ही चलो। प्रोग्राम सौगात दे विच तुसी आ सकते हो दोस्तों, 0181-2342-171 नंबर डायल करना है, 0181-2342-171 इस नंबर दे तुसी पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकते हो। तुहाडा दोस्त शाम शर्मा तुहाडी उड़ीक कर रहा है इस फोन कॉल दे नाल। देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी, मैं राजू बोल रहा जी।
0: जी जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी थोड़ा भी जी।
0: किवें चंडीगढ़ दा हाल चाल? ठीक है,
1: बहुत वधिया ने सर जी। बारिश दा मौसम होया।
0: फिर बारा?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: पहला भी होके हटी है?
1: हाँ जी, इधर तो नहीं हुई पहला जी।
0: अच्छा, इधर नहीं हुई। लो जी, फिर बारिश दा तुसी लुत्फ लैण दे लई तैयार हो जाओ जे हले तक नहीं लिया है जी। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ

पूरा ट्रक न्याणिया दा इक विच ताज दे आया जे आउंदा अतबार ना तैनू मेरे उत्ते नारे देव थरीकियां वाले कोलों पुछ ला तू मटियारे आथण नू लैके जाना उना ले मुर्गी दाना जे घरे पहुंच गए कले लो वोटी गोड्या।

0: जी दोस्तों, सचमुच इस तरह के सोहने सोहने गीत, पुराने गीत, ये जड़ा गीतों का खजाना है ना, ये सिर्फ तो सिर्फ आकाशवाणी के जलंधर केंद्र को। इस करके तुसी साढ़े को किसी भी तरह के पंजाबी गीत सुनने के लिए 0182-43-174 नंबर डायल करके साढ़े तक पहुँचो। प्रोग्राम सौगात का वेला तकरीबन एक घंटे का पिया है साढ़े तक। इस प्रोग्राम से तुसी अपने पंजाबी गीतों की फरमाइश कर सकते हो। लो जी, नंबर नो डायल करके पहुंच गए ने साडे दोस्त। हेलो,
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सोम दत्त बोलदा जी, मैं सगेड़ नाभे तो जी।
0: जी जी सोम दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर तुहाडा जी।
0: सोम दत्त जी, तुसी भी साडे बहुत पुराने लिसनर हो।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: ते साडे इस प्रोग्राम च अक्सर अपनी हाजिरी लगवांदे रहने हो। अज असी परिवार दी गल कर रहे, इंटरनेशनल परिवार दिवस मनाया जा रहा है।

0: ट्रायल ऑफ बाश और टैक्सी भी हाजिर है।
1: मैं का कितने कितने ले जाऊंगे दीप जी।
0: बिल्ला मंदिर सिंध में अंदर शहर जलंधर कला कलंदर मुगल काटे राम तलाई हेठ तलाई उत्ते रजाई सब्जी मंडी मोया दी मंडी बिच जमना दे गोते छोटे वड्डी जेल कोतवाली थाना गंदा नाला मैका वाला हस्पताल परिवार नियोजन।

0: हाय, वापस कदों आओगे सोनियो?
1: एक महीना दो महीने तीन महीने चिट्ठी पत्र लारा लप्पा अड्डी टप्पा एक साल फिर दो साल फिर तीन साल फिर हौली हौली किस आना ते किस जाना रड़ा रप्पा शोर शराबा फिर मुकदमा नार तरीका फिर तलाक ते
0: बस करो।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात दे विच अज गल्लां बातां बहुत खूबसूरत हो रही हैं। मेरी गल सुनो सरदार जी, ये गीत भी तुसी सुनिया ते राम प्रसाद जी कह रहे सन कि ये हुण तुसी सुनियो कि सरदार जी नूं की गल्लां बातां कह रहे ने। लो जी, फिर अगले कॉलर भी आ गए ने। देखिए जी, दोस्त आ गए ने, किहड़े दोस्त ने? हैलो,
1: श्याम जी, सत श्री
0: सत
1: अकाल।
0: श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: देसराज ड्राइवर, तहसील ढोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा तो।
0: ओ वाह जी वाह, देसराज जी स्वागत है प्रोग्राम च।
1: तुहाडे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। हाँ
0: देसराज जी, अजकल फिर छुट्टियां हो गई हैं।
1: जी, 1 जुलाई नू लगण गए स्कूल।
0: वक्त फिर किदां निकलदा है?
1: बहुत वधिया निकलदा जी।
0: बहुत वधिया, रेडियो दे नाल निकलदा है।
1: 3 बजे तक थोड़े
0: वाह जी वाह, ये 3 बजे तक साढ़े नाल रहोगे, गीत सुनोगे।
1: नाल जी। हाँ
0: अच्छा,
1: जी, फिर दिने सोईदा और।
0: रात नू प्रोग्राम सुनते हो, दिने सुनते हो?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये तो बहुत वधिया गल है जी। ते आज फिर फरमाइश कड़ी लेके आए हो?
1: हरजीत हरमन दा ला दो कोई भी।
0: लो जी, सुनाने हैं तुहानू हरजीत हरमन की आवाज़ दे विच एक खूबसूरत गीत। शुक्रिया जी देसराज जी कॉल करन दे लई।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।

0: जी दोस्तों, सावन महीना किणमिण किणमिण, बिल्कुल जी किणमिण किणमिण तो वैसे शुरू हो गई है। प्रोग्राम सौगात का वेला भी रह गया 10 मिनट का, तो कॉलर भी साढ़े को आ गए ने। हैलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च। कौन बोल रहे हो?
1: अमरीक सिंह
0: अमरीक सिंह जी, कितों बोलते हो?
1: फाजिल
0: फाजिलका तो जी। अमरीक सिंह जी, अक्सर प्रोग्राम सुनते हो जो कितने कितने प्रोग्राम?
1: सुनी जाएगी।

0: स्वागत है जी प्रोग्राम च। कौन बोल रहे हो?
1: अमरीक सिंह
0: अमरीक सिंह जी, कितने बोलते हो?
1: फाजिल
0: फाजिलका तो जी। अमरीक सिंह जी, अक्सर प्रोग्राम सुनते हो जो कितने कितने प्रोग्राम?
1: प्रोग्राम सुनी था जी, हर रोज जी, बिल्कुल
0: हर रोज सुनते हो? चंगा लगता है। आज केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: प्रगट भागो तो ला दो कोई
0: लो जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनाने हैं तो प्रगट भागो की आवाज़ के गीत।

जी दोस्तों, गल मुक्की ना सज्जन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। बिल्कुल जी, हले रात जड़ी है मुकदी पई है, पर तुसी वी इस प्रोग्राम दे विच आए हो। जिन्हां दोस्तां ने अज कॉल कीती उन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिहड़े कोशिश करदे रहे उन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अज दा विशा जिहड़ा सी अपने परिवार दे विच अपना इस तरह का मुहब्बत प्यार पा के रखिए कि जिस दे विच मोबाइल या सोशल मीडिया बिल्कुल भी विच ना आवे, कि तुसी आपस दे विच इन्नी कि ज़्यादा गलबात कर सको कि किसी नूं भी होर चीज़ की जरूरत ना पाए। लो जी, हुण अपने दोस्त शाम शर्मा नूं दे दिओ इजाजत। इस तरह हसदे रहो, वसदे रहो, अपना ते अपने गुआंढियों का ध्यान रखना है, और अपनी दुआवां च अपने दोस्त नूं भी याद रख लिया करो। ते हुण दे दिओ जी इजाजत। वंदे मातरम, जय।

तै साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या दीजै, सीस वडे कर बैसण दीजै, विण सिर सेव करी जै। ए कथन गुरमुख प्यारे जना अते उस परमात्मा विचाले प्रीत दा वर्णन करदा है। जे कोई उस प्रीतम दी बात सुनावे तां गुरमुख प्यारे अपना सीस अर्पण करन लई तैयार हो जांदे ने। उते अपने सीस नू अर्पण करके उसका आसन बना के प्रभु दी बात सुनावन वाले वडभागे जीव नू वो आसन ग्रहण करन वास्ते बेनती करदे ने। प्रभु दी प्राप्ति चतुराइयां स्याणपा नाल नहीं हुंदी, ना ही कोई दान कीत्या हुंदी है। भावें लखां मन सोना ही क्यों ना दान कर दिता जावे, प्रभु दी प्राप्ति तां मन अर्पण करके हुंदी है। कंचन स्यो पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

जीव ऊणे हां, थोड़ विते हां, करता तू मैं माण ने माणे, माण महत नाम तन पलै, साचे सबद समाणे। सरवण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया हुआ यह शब्द।

करता तू मैं माण निमाणे, माण महत नाम तन पले, साचे शब्द समाणे। इस शब्द गायन कीता सी भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होते जो प्यास प्योस पे बन के, बंचत सिद्ध को बिद मिलायो, पूरन पाओ मन ठौर बसो, रस बासन सो जो दैद सुतायो, गोबिंद वा

चोलना गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपे नाम नव निदपे रसन अनस रस है सत कर जानी हो फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है त्याई है अन मार्ग तजहो भजो हर ज्ञानी हो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उद्धरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम वंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो।

चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपे नाम नव ने दपे रसन ऐ नस रस है सत कर जानी हो फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख है त्याई है अन मार्ग तजहो भजो हर ज्ञानी हो बचन गुर विद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उद्धरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम वंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जा

जैस सहज सो भये, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसमदि, नूर अर सोह कुरसोह चटिया, तुद डठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सचा पातशाह, सिर शाहद शाहो, जिस पास बैठिया सोई, सबना दावे साहो, सज्जन सचा पातशाह, सिर शाहद शाहो, जिस पास बैठिया सोई, सब

शिव मुन गए नत जात कबेलास को जाकु जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पे किए फिर तू उदास को सो तिन सतगुरु सुख भाई कृपा धारी जी

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा भगवती सिमर कै गुरु नानक।

0: जप माली कान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई सोडी ले पखंडा नाम नहीं है जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नहा दो ना पे आवे ओई।